हम अकश्वरुं इमाम सालिह हमल तकुला मी हुं दन्नाश एवरनी मी सकुं कुरे हम एम में हेउ मी हुने।

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक काफुं अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडा हिं कमेन ने अफन तिकन कोलन
1: तिकु दुं हावदा ही रंगल लाए तिहं मुन्ना ए कही आ हाल बला फे मुन्ना सकां कां को देन न हेदी मुन्ना वरहा उपावे

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: हिमाबी वैक्सीन डेडोस जहुमुं हिमाबी जहुम के फुरसत अनुवादी हाथिंग इंसेत्य कुड़कोदे आदि बाली जहुन कमुगावियस बाली का बोडोरुमुं रक्का तेर कोदे
4: हिमाबी हैं रक्का तेर वो मत देवे वैक्सीन के तेरेगा
5: मीसल्स वैक्सीन
4: एमआर मीसल्स रुबेला वैक्सीन
5: एमएमआर मीसल्स मम्प्स रुबेला वैक्सीन हिमने
4: हिमाबी हैं रक्का तेर वो मा मीसल्स वैक्सीन के डेडोस फुरिहम कुरेफा वाकं याकिं कुरावा
3: हिमाबी के आलामते फेनिजनमा लसनु कुरावा सिही फरवा हो दवा
2: कामयाब ये फारवेरी का वाम बेनुंता कामयाब ये फारवेरिंग
1: का तुम इरुशाद
6: होदम बेनुंता ये फार फुरा कुरम बेनुंता वुन दंकार कम में होने हीर दोएगे रिपीट होने हीर दोएगे हावीरो हाथरो गेट फन रहेगा आदि आदित्त दोएगे हावीरो हाथरो गेट फन रहेगा
1: इंगा 741 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
6: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं
5: हिमाबी जेहिफा वामी हकु कैसा किं भी हेलमुं वैग तेरे वायरस फेतुरे गेंदियों हिमाबी फेतुरे बंदो तने गानमा देगा डेरिंग हायर वंदें वैग तेरे का वायरस होरे
4: वायरस के असर होरी तने का एल्लुम फहो लोला नेफता आंगेगा एल्लुमुं हिमाबी फेतुरे
3: बाया देखोला दिफा इबार उन्हें मी हूँ आदि मीसल्स वैक्सीन के दे डोज फुरी हम को फान नुआ फरा तका बाली जो मुगे फुरसत बड़ो हिमाबी के आलामते फेनिजनमा लसनु कुरवा सिही फरवा हो दवा
7: वगुता हालताय को लोब इम्तिहान कुरेवे मि दुनियेगा दरिफुड़ देखे इंतिहाय लोबवा बप्पे
1: दरिफु आदे वा बप्पा काते नेदुम कुरे कल वाहक अड़ो हालन तेय दो
8: एकम बप्पे प्रॉमिस वेबा कक्के वरे कुरे नुने
7: दा ए बप्पा गे होफेन दे कुं हुट्टाली दरिफुड़ गे होफेन ता हकीकत कन हते आदिनु मट्टका ए बप्पा गे दुनिये आबाद कुरुं हुट्टाली ए दरिफुल के दुनिये फुरी हम को दिनों मट्टका
1: आर में तो कुल्ला फरों दे आते स्कूर ये ने मंजरोड
7: लफ्स तक का कुंपुने नो देवे ने कुरुबानी के वाहक रिहों हुरी हिते के वाहक
1: दिवे ही राज्य के आड़ूंगे निस्तनी
7: रिसाही
9: कोमे बुरा सच दो है कि मैं दूर कोरी एकार गड़ी फड़ा रहा।
7: रिपीट हमेरे दिया गड़ी तेरी हूँ, आदि हुकुर दोगेरे मैं दम बार गड़ी तेरी हूँ। एंगा 47 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव, आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड।

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहरमेंगे बहा सगाफता आदकादाग तेरेगा आद बावर गंतत्तके हुरे अडवहालं बेनुंता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिविराजे गड़ा ट्यून कोला अंगार दोगे हावीर फाहिज जहर बुरासे दोगे हावीर हाथर गड़ फनराग अदी आदित दोगे हावीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ो

0: मुन्ना कोबा की है ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना आरांगला खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंग कमेंने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दा है रंगला है तिहं मुन्ना आए कही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांग कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे